0: उड़ान भरी खशे जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन अब तो बस आसमान बाकी है जाने कितनी
1: इरशाद
0: इम्तिहान से गुजर के क्या देखा इम्तिहान से गुजर के क्या देखा एक नया इम्तिहान बाकी है जाने कितनी उड़ान। और इस गजल का आखिरी शेर खास शेर हर युग का सच है लेकिन इस युग का कुछ ज्यादा सच है
1: जी,
0: सर
1: जी।
0: देखें सर कलम होंगे कल यहाँ उनके अजय भाई सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके मुंह में जुबान
1: क्या बात है क्या बात है वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है वाह वाह वाह वाह
0: सर कलम होंगे

0: क्या बात है। काश कि ये जगजीत जी की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ ये रिलीज हो जाए तो हम सभी के लिए ये एक अनमोल चीज बन जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी दास्तान को शुरू से शुरू करते हैं। जयपुर में वो कौन सा दौर था जब आपने लिखना शुरू किया था? दीप्ति जी कहती हैं कि जब इश्क होता है तब लोग लिखते हैं।
1: जब दिल टूटता है तो
2: ये सवाल दीप्ति जी ने पिछली मुलाकात में भी पूछा था एक गोष्ठी में। मेरे साथ ये हुआ कि दिल लगा तो फिर लगता ही चला गया। मतलब ये था कि वो हम लोग एमए में साथ थे और अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके साहस ने इस सपने को सच बनाया
0: जी,
2: और अब वो मेरी अर्धांगिनी हैं और अब मेरी जो सृजन यात्रा में उनका बड़ा योगदान है। मुझे उन्होंने घर की जिम्मेदारियों से एक तरह से मुक्त रखा है, अपना लिखना पढ़ना मैं करता रहता हूं, तो ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा वो है, सहयोग भी एहसान भी। तो दिल टूटने का जवाब यह है।
0: उनके लिए कुछ लिखा है सर आपने?
2: पढ़ दूं जी। ये एक मेरी शुरुआत गीत से हुई थी और फिर बाद में गजल में आया, तो ये शुरुआती गीतों में से एक है।

0: queiram.
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. आपने अभी ये एक जिक्र किया कि गीतों के जरिए आपने लेखन की दुनिया में प्रवेश किया था. मुझे ये पता है कि एक गीत आपका ऐसा है जो नीरज जी से बड़ी प्रशंसा उस गीत ने पाई थी. हम चाहते हैं कि उसका जिक्र यहाँ हो.
0: तो वो गीत मैं पढ़ रहा हूँ. ये गीत मैंने जब मैं शुरुआत में गीत लिख रहा था जयपुर में मंचों पर कवि सम्मेलन में जा रहा था, तो ये गीत मैंने उदयपुर के कवि सम्मेलन में पढ़ा था जहाँ नीरज जी उस वक्त उनकी क्या शान थी और क्या जलवा था. तो उन्होंने ये वो मुख्य कवि थे और मैं एक तरफ से शुरुआती उन लोगों में से था. तो ये गीत जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने अपने गले की माला मेरे गले में डाली और एक सम्मान और एक प्यार एक आशीर्वाद मुझे दिया. तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ.

0: वाह क्या बात है, क्या बात है। विविध भारती की आपके दौर की बात कर ली जाए, रेडियो का जो आपका सफर है आकाशवाणी का, उसमें आज मुझे एक दिलचस्प बात यह पता चली कि आपने समंदर के किनारे भी काम किया, रेगिस्तान में भी काम किया, पहाड़ों पर भी काम किया। तो विविध भारती का जो मामला है, विविध भारती में आप लगातार कई बार रहे और इस दौरान काफी सारी चीजें हैं जो हैं आपने शुरू की, जैसे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम है वो आपकी देन है, सरगम के सितारे आपकी देन है, यूथ एक्सप्रेस गुलदस्ता है और सखी सहेली सर के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। हमारे कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहां रिकॉर्डिंग के लिए जिक्र कर लूं कि यहां हमारी भूतपूर्व घोषिका निमी जी मौजूद हैं और उसके अलावा गोपाल सिंह नेपाली जी की बेटी कमला कुंदर जो कि विविध भारती में हमारी साथी थी, कमलेश पाठक जी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर थी, ये सारे पुराने लोग यहाँ एक साथ मौजूद हैं और आपके साथ ये सारे काम भी कर चुके हैं। तो विविध भारती से जुड़ी कुछ यादें बांटिए।
1: विविध भारती से जुड़ी तो यादें ही यादें हैं, मतलब और खूब यादें हैं। मेरा बेहतर और बेहतरीन समय आकाशवाणी में अगर कहीं गुजरा है तो या तो जयपुर और या फिर विविध भारती। ये वो चैनल है जिसे सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, जिसको सुनते सुनते मैंने गुनगुनाना सीखा, गाना सीखा और कभी कल्पना नहीं की थी कि उसी चैनल को जिसको मैं सुन सुन के बड़ा हो रहा हूं, मैं कभी आऊंगा और इस चैनल में कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उसको निभाऊंगा।
0: क्या बात,
1: तो ये
0: क्या बात?
1: तो ये सौभाग्य है मेरा और मुझे तीन अलग अलग अवसरों पर विविध भारती में काम करने का मौका मिला और हर बार बहुत अच्छी टीम मिली, जिनकी दो सदस्य तो अभी भी बहुत सक्रिय हैं, यूनुस और ममता। बाकी भी वो दौर जब मैं 12 में रिटायर हुआ, उससे पहले का जो दौर था बहुत क्रीम टैलेंट था विविध भारती का, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग और अपना 100% देने वाले लोग। तो विविध भारती से विदा होते हुए मैं गर्व भी महसूस कर रहा था, खुशी भी महसूस कर रहा था, मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं किस आयोजन किस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सामने नहीं। मैं बहुत शान के साथ, बहुत खुशी के साथ, संतोष के साथ यहां से गया हूं।
0: वापस शायरी की दुनिया की तरफ लौटते हैं। अब मैं आपसे उस गजल की फरमाइश कर रहा हूं जिसको सुनने के लिए सब लोग यहां पर जमा है, जिसे पंकज उधास ने गा के बहुत मशहूर किया था।
1: जी ये वो गजल है जिसने सारी दुनिया में मेरी पहचान बनाई या मुझे पहुंचाया। आज भी मतलब मैं जाता हूं उससे पहले ये गजल वहां होती है और लोग इसके लिए कहते हैं कि वो जरूर सुनाएं। मैं पेश कर रहा हूं यूनुस।
0: इरशाद इरशाद।

0: और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस गजल से जुड़ी हुई एक बड़ी यादगार घटना है, उसके बारे में जरा बताइए।
0: ये गजल पंकज जी ने गाई, दुनिया में पहुंची। इसके साथ दो घटनाएं हैं।
1: अच्छा, दो हैं जी, मुझे मैंने एक सोचा था। जी जी।
0: एक घटना तो यह है कि जब पंकज जी ने गाई, उस वक्त एक सिर्फ दूरदर्शन ही था, ये प्राइवेट चैनल वगैरह तो उस जमाने में थे ही नहीं, तो एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था आरोही।
1: जी जी, दूरदर्शन
0: उस वक्त। हाँ, तो उसमें ये सुगम संगीत के एक से एक प्रोग्राम आते थे जिसमें जगजीत जी, पंकज जी, कौन कौन नहीं आया उसमें। तो ये गजल जब उन्होंने गाई तो उस वक्त स्क्रीन पे राइटर का नाम नहीं आता था या नहीं आया था उस दिन, ये जो भी है। तो ये गजल गाई, मेरा एक जयपुर का ही पुराना दोस्त था, वो अपने घर में जैसे सब लोग देख रहे थे, वो देख रहा था प्रोग्राम। तो ये जब गजल आई तो दीप्ति जी, वो उसका रिएक्शन ये होता है, वो उसने मुझे बहुत बाद में बताया जो मिला, बोले हम लोग देख रहे थे और बैठ के, फिर मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी लोग क्या कहा के गजल कहते हैं इस तरह की।
1: वाह वाह, पाकिस्तानी लोग।
0: तो वो ये सोच नहीं पा रहा था कि ये हिंदुस्तान का कोई शायर इस तरह की गजल कह सकता है, ये कही होगी। तो बहुत बाद में बोला। और दूसरी बात ये कि जब ये पंकज दास जी सूरत में कंसर्ट में सुनाने गए गजल, मतलब एक कंसर्ट उनका चल रहा था, मजरू सुल्तानपुरी साहब उसके चीफ गेस्ट थे, जैसा आज ये दीप्ति जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये गजल सुनाना शुरू किया, ये गजल अपनी, जब ये शेर आया तो मजरू साहब ने कहा कि पंकज फिर पढ़ो। तो दो तीन बार उन्होंने पढ़वाया। तो जब ये ऐसा कहा जाता है मुशायरे में या संगीत में, तो ये सुनाने वाले गाने वालों को लगता है कि कहीं कुछ गलत गा दिया मैंने या गलत बोल दिया, फिर तलफ़ुज़ गलत हो गया, लाइन गलत बोल दी, कुछ ना कुछ गलत हो गया, तभी मुझसे बार बार कह रहे कि फिर पढ़ो। तो उन्होंने फिर पढ़ दिया, तीन बार ये शेर पढ़ा। फिर उन्होंने बताया, पंकज जी ने बताया मुझे कि जब ग्रीन रूम में आए तो मजरू साहब, तो उन्होंने कहा कि ये गजल किसकी थी जो तुम सुने। तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, कि मुंबई के एक नौजवान शायर हैं, तो उनका ये है। तो बोले मेरी तरफ से उस नौजवान शायर को मुबारकबाद दे रहे, नई तरह की गजल है, अलग तरह की गजल है।
1: क्या बात है, मजरू साहब की तरफ से ये बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जगजीत सिंह के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं।
0: नहीं, जगजीत जी का प्यार मुझे बहुत मिला, और ऐसा प्यार मिला कि वो शायद किसी शायर के

0: आऊं, बस अपने आप को मंजूर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात।
0: अगर आप खुद को इस स्वीकार स्वीकृत नहीं है तो फिर मतलब क्या बाकी चीजों का।
1: वाह,
0: ये

0: ये मजबूर हो
1: जाऊं।
0: बहुत शुक्रिया। ये कब चाह कि मैं ऋषिर
1: इरशाद,
0: अगर हम अपने आप में टटोले तो हम खुद अपने आप में कितना है, हम एक बहुत कुछ चीजें समझ चुकी हैं और हम खुद कितने रह गए ये देखें। ये कब चाह के मैं मेरे दिल से घर दुनिया निकल जाए,
1: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
0: मैं अपने आप में भरपूर।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार है, क्या बात है, क्या बात है।
0: मेरे अंदर से घर

0: कि मैं, और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर
1: इरशाद,
0: आईने पे बहुत शेर आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग, ये कब चाह कि मैं न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
1: वाह, न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
0: न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चक ना चू,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, इसे फिर पढ़िए, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: न बोल

0: Şükrü.
1: Vah vah vah vah vah. Kya baat hai, kya baat hai, kya baat hai. Main ab audience ke liye forum open karta hoon. Aap mein se koi agar sawal poochna chahe to ye mic hai aur aap pooch sakte hain.
2: सर मेरा नाम धीरज पुरोहित है. सर मैं शायरी से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न पूछ रहा हूँ और मुझे उसका मैं क्षमा चाहते हुए कूटनीतिक नहीं लेकिन सच्चा उत्तर चाहिए. दिल्ली के एक शायर हैं, उनका शेर इतना प्रसिद्ध हुआ जो कि मुझे बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि शायद ये शेर की श्रेणी में नहीं है. उनका शेर है कि कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता. सर ये क्या सही है? यानी कोई भी मिठाई मिठाई नहीं होती, यानी जो मिठाई होती है वो सब एक ही कैटेगरी की होती है, उनमें भी तो विविधताएं होती है ना, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
1: बड़ा मुश्किल सवाल है
2: लेकिन सर मैं आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से जरूर.
0: नहीं बिल्कुल सही है पूरे जी. वो शेर उसकी सच्चाई अलग है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता. लेकिन ऐसा भी नहीं है, अच्छे गायक बुरे गायक में फर्क होता है, अच्छे शायर बुरे शायर में फर्क होता है, अच्छे कहानीकार बुरे कहानीकार में फर्क होता है, हर अच्छे खिलाड़ी और बुरे खिलाड़ी में फर्क होता है. तो लेवल और स्तर का तो फर्क होता है. मतलब जैसे सुर में गा देने को सिर्फ गाना नहीं बोलते, गाने में असर होना चाहिए.
2: असर
1: क्या प्यारी बात है,
0: है ना? गाने में असर होना चाहिए.
2: जी सर आपके उत्तर का तात्पर्य यह है कि वो मुकम्मल शेर तो है लेकिन शेरों में भी वर्गीकरण जरूर है,
0: जिसमें असर है वही सच्चा शेर.
2: जी जी
3: सर से क्या सवाल करूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने इतने सुंदर गीतों से अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके बाद फिर कभी गीत लिखे ही नहीं, और क्यों?
0: हाँ नहीं, बहुत सही सवाल है कमलेश जी. मैं शुरू में मंच पे गीत पढ़ता था, जो नीरज जी वाली घटना मैंने आपको बताई, मंचों पे राजस्थान भर में घूमता था, बाहर भी गया. लेकिन जयपुर में जो हम उम्र लोग होते हैं जिसमें हिंदी वाले भी होते हैं उर्दू वाले भी होते हैं, आपका उठना बैठना होता है. हाँ तो जो मेरे हम उम्र जो शायर दोस्त थे जो जिनके साथ उठना बैठना भी था, तो वो उनको सुनते सुनते भी फिर उनकी कुछ गजलें सुन रहा और फिर कुछ मुशायरे वहां पे जो अटेंड किए जिसमें बड़े बड़े शायर जो है ना जयपुर में बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे और ये सब मजरू सुल्तानपुरी साहब, कैफी आजमी साहब, निदा साहब, बशीर बद्र, शहरयार, ये सब बड़े बड़े शायर वहां पे आते रहे. तो वो जब मैंने देखा कि दो मिसरों में पूरी बात हो जाती है और गीत जो है ऐसा आसान भी नहीं है कि आप गीत से लेकर आसानी से शायरी में आ जाए और दो पंक्तियों में कहना शुरू कर दे. लेकिन वो उस विधा ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, बांधा, मैंने उसमें कोशिश की और वो मेरे यार दोस्तों को सब हम उम्र लोगों को ठीक लगने लगी और बात कुछ जम गई और फिर मैं वो कहने लगा तो फिर गजल का ही जादू मुझ पे सवार हो गया वो शेर कहने पे. तो वो मैंने की तो फिर जब हुआ तो मैंने गजल को अपनाया और फिर शायद गजल ने मुझे अपना लिया. जी
1: क्या बात है.
4: नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई नया नया शायर बनना चाहता है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, विचार कहाँ से आते हैं? क्योंकि कविताएं बहुत से लोग लिखते हैं और वो बहुत ही अलग अलग तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं, वैसे ही शेर भी बहुत ही अजीब तरीके के हो रहे हैं जिनको शेर शायद नहीं भी बोला जा सकता है. तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छी दिशा में बढ़ सके?
1: ये लड़की अपने लिए पूछ रही है
0: जी. ये यही काम करती है.
1: हाँ, ये कैजुअल अनाउंसर है नेहा.
0: अच्छा, नेहा
1: शर्मा.

0: 87 की बात है, 86 में बॉम्बे आया, 87 में नेहरू सेंटर का बड़ा मुशायरा जिसमें निदा साहब ने संचालन किया और मैं उसके शुरुआती शायरों में से था। उस वक्त मंच पर सारे अली सरदार जाफरी, मजरू साहब, कैफी साहब, खुमार बाराबंकी, निदा साहब, बशीर बद्र, मुमताज राशिद, जफर गोरखपुरी, कोई बड़ा नाम लीजिए जो नेहरू सेंटर का मुशायरा ऐसा होता था, बड़ा मुशायरा।
1: जी जी।
0: और सुनने वालों में आपको हैरानी होगी, सुनने वाले में होते थे और थे उस वक्त दिलीप कुमार,
1: वाह,
0: अजीत फिल्म एक्टर, तो ऐसे बड़े बड़े लोग, ऑडियंस खचाखच भरा हुआ नेहरू सेंटर, ये हर साल का उनका था। तो और मैं बिल्कुल बॉम्बे में, एक तरह से मेरी शुरुआत ही थी, निदा साहब ने मुझे सौभाग्य मेरा कि उन्होंने मौका दिया, वो पहली गजल पढ़ी और वो गजल मुझसे दो बार सुनी गई, मतलब बार बार मुझे प्यार मिला उस गजल ने, इतना प्यार दिया, इतनी पहचान दी और इतना आत्मविश्वास दिया, और उससे फिर वो एक पहचान बात से बात निकलती है और लोगों से लोगों तक पहुंचती है, और वो उसकी कैसेट वगैरह, जैसे दुबई के कैसेट आने लगे, इधर इधर के कैसेट दुबई जाते थे, तो एक बात पहुंच गई कि भैया ये शायर है जो अच्छा पढ़ता भी है, सब कुछ है, तो इस तरह से एक एंट्री हुई। तो मुझे नाटक करने की या अदाकारी करने की और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया और अब तक किया हुआ है।
1: बिल्कुल सर। तो उसी गंभीरता से अब आपकी अगली गजल हम सुनना चाहेंगे, कौन सी वाली, जो नेहरू सेंटर में सुनाई थी?
0: नहीं, वो सुना चुका पहले, वो जानी
1: कितनी उड़ान बाकी है, वही थी। तो कोई और गजल सुनते हैं।
0: ये गजल भी मेरे लिए खास गजल है। हाँ, तो ये उर्दू में बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहादुर शाह जफर के जमाने से बल्कि हो रही है, बड़े बड़े उस्ताद भी जो हैं वो तरही गजल कहते हैं, यानी कि एक मीटर दिया जाता है और उसमें हर एक शायर अपने अपनी गजल कह के लाता है। तो रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी, जिसमें रिसर्च का काम होता है, तो उन्होंने एक तरही मुशायरा कराया, तो एक मीटर देते हैं, एक पंक्ति देते हैं, लाइन देते हैं, उस पर अब हर शायर अपनी अपनी गजल लेके आता है, तो हिंदुस्तान भर के शायर वहां पे अपने अपने क्षेत्र में जो प्रतिनिधि शायर थे, मुंबई से मैं गया था तो मैंने ये गजल कही और मेरा सौभाग्य, मेरी खुशकिस्मती की ये गजल वहां मुझसे बहुत प्यार से दो बार सुनी गई और सब दिग्गज मौजूद थे उर्दू दुनिया के वहां रामपुर में, तो उसने एक मुझे बहुत अलग तरह का आत्मविश्वास दिया। मैं पढ़ रहा हूं। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने, कहां से हम,

0: क्या बात है।
1: शुक्रिया। अब क्या बताएं। और एक अलग सा शेर है, एक जमाना था कि टीवी पर अक्सर वो नार्को टेस्ट का बहुत जोर था, इसका नार्को टेस्ट, इसका नार्को, ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, अपराधियों का ये अक्सर होता था। तो लेकिन मेरा यह मानना है कि ऊपर वाले ने एक मशीन हर इंसान के बॉडी में फिट की हुई है जो ये बताती है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ये शेर में डल गया, देखें। अब क्या बताएं, टूटे कितने कहां से हम, लेकिन हमारी आंखों ने, लेकिन हम

0: क्या बात है शानदार है।
1: अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहां से।
0: बहुत शानदार गजल आपने सुनाई और आपकी इस पूरी यात्रा में आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी जिंदगी में क्या महत्व आकाशवाणी का रहा है और आकाशवाणी की इस 90 बरस की यात्रा में ये जो पूरी यात्रा है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है।
1: मैं आकाशवाणी परिवार का सदस्य हूं और रहूंगा। इसी ने मुझे एक सांस्कृतिक संस्था ने जिसको सुन मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस संस्थान में एक मामूली से कार्यक्रम। पहले मैं कैजुअल युवाणी जब शुरू हुआ था जयपुर में तो युवाणी का ऑडिशन देने गया था। एक युवाणी के आर्टिस्ट के तौर पर मैंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया और वो सुख अलग ही था कि आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए हैं और आपको ये लगे कि अब आप आकाशवाणी में कवि के रूप में और नाटक कलाकार के रूप में कि आपकी आवाज अब आकाशवाणी पे आएगी। वो एक अलग थ्रिल था, वो एक जमाना ही अलग था। तो मेरा तो सफर ही, हालांकि मैं रंगमंच पत्रकारिता सब कुछ की मैंने, लेकिन मेरा क्रिएटिव सफर जो जिसमें संगीत भी है, जिसमें नाटक भी है, जिसमें लेखन भी है और कार्यक्रमों का अलग अलग संयोजन भी है, तो मेरा जो क्रिएटिव जो सफर है वो शुरू से ही जो मैंने इतना साल 1980 से लेकर 1900 2000

0: और बारह तक गुजारा अलग अलग पदों पर, अलग अलग केंद्रों पर और खास तौर से विविध भारती। और मैं जयपुर को याद करूंगा कि जयपुर ने मेरी नींव रखी और विविध भारती ने मुझे एक वो आकाश दिया कि मैं सब जगह अपनी बात, अपनी परिकल्पना को साकार कर सकूं। तो विविध भारती के अलावा मैं आकाशवाणी के 90 साल की बात करूं तो ये वो संस्थान है जो अगर दुनिया हिन्दुस्तान के कोने कोने में कोई चीज पहुंचती है तो आकाशवाणी है। न अखबार पहुंचते हैं, टीवी तो बहुत बात की चीज है और बाकी तो सोशल मीडिया तो खैर अभी कल ही पैदा हुआ है सब कुछ। तो एक जमाना था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखने वाली कोई चीज थी तो या तो फिल्म थी या आकाशवाणी। फिल्में पहुंचती थी और या आकाशवाणी, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था और आकाशवाणी के लिए आपको, जिसका सफर हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, बनाए रखने में और आज भी जितनी रीच हमारे इस माध्यम की है शायद किसी माध्यम की नहीं है। और इस माध्यम को जितना सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए और इसकी इज्जत की जाए और इसका एहसान माना जाए, 90 साल होने के बाद या होने पर इस आकाशवाणी के लिए अपना धन्यवाद भी देता हूँ, कृतार्थ भी उसका और शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शानदार महफिल आपके साथ रही है और यूं लगता है जैसे बातों का सिलसिला कभी खत्म ना हो, लेकिन वक्त की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। चलते चलते आपसे एक गजल सुनना चाहेंगे, आपके मन की गजल।
0: रंग मौसम का

ले बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से गिरा था पहले रंग।

0: वाह।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला कब थी इबादत गाहे, दिल में इंसान के खुदा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और ज़ुबैर का आखिरी शेर
0: इरशाद,
1: मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था।
0: ओ हो, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत शुक्रिया। मैंने

0: उसे आईना मुझ पे हंसा था, पहले रंग मौसम का हरा था पहले। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्या बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में आए और आपने सृजन भारती की इस महफिल को रोशन किया सर।
2: और अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, दीप्ति मिश्र जी को हम आमंत्रित करेंगे आज की हमारी मुख्य अतिथि साहिबा। मैं बताना चाहूंगी एक शानदार शायरा, जानदार अभिनेत्री और कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं दीप्ति जी। आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं, बर्फ में पलती हुई आग है तो है और बात दिल की कह तो दें, ये उर्दू में है, और एक किताब और है यहाँ वहाँ कहाँ,
3: और आ गई है तुम्हारे लिए।
2: तुम्हारे लिए स्वागत है। और आपकी रचनाओं को गुलाम अली साहब, कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिहरन जी ने, उदित नारायण जी ने, श्रेया घोषाल, सोमा घोष, कविता सेठ और मधुश्री जैसी बड़ी कलाकारों ने अपनी आवाज भी दी है। तो दीप्ति जी आपका स्वागत है। इनकी चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी लिखी हुई। जिससे तुमने खुद को देखा हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे, हम एक मीठा दरिया थे। दीप्ति जी
4: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, अभिभूत हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ पे राजेश रेड्डी साहब परफॉर्म कर रहे हैं उस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि हूँ। राजेश जी से मेरी पहली मुलाकात मेरे ख्याल से 2002 या 3 में एक रेलवेज का प्रोग्राम था जिसमें निदा साहब के साथ आप आए थे, वहां हम लोग की मुलाकात हुई, हम लोगों ने मुशायरा पढ़ा। उसके बाद बहुत एक लंबा सफर साथ में रहा, हम लोगों ने बहुत सारे मुशायरे साथ में पढ़े, यात्राएं की। राजेश जी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़े समय कहना चाहूंगी कि ये बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं, और बहुत चुप रहना, बहुत कम बोलना, बहुत रिजर्व रहना, तो इनको जानना बड़ा मुश्किल होता है। आप बरसों साथ रहिए लेकिन इनको खोल पाना, इनको जान पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आज का ये कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा रहा, मैं बधाई देना चाहूंगी। इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो श्रोता हैं वो तो अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो शायर है, जो कवि है, वो सहृदय श्रोता ढूंढता रहता है। वो चाहता है कि उसको ऐसे श्रोता मिले जहां पे वो अपना दिल खोल सके, उसको वो जगह नहीं मिलती तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है और सिर्फ उतना खोलता है जितना सामने की पात्रता होती है। तो जब उसको ऐसा पात्र मिल जाता है तो उसका दिल खुल जाता है, और आज वही हुआ है। राजेश जी ने दिल खोल के जो है अपनी बात कही, यह है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। जल गया परवानागर तो क्या खता है शम की, जल गया परवानागर तो क्या खता है शम की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। और ये सब दोस्तों के नाम, सारे दोस्त, जिसके भी दोस्त जहां भी हैं, कि दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और है कि कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। आखिरी शेर है, कुर्बत का मतलब होता है निकटता, समीपता, कनेक्शन, कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूर

0: थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है।
1: आप सुन रहे थे सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संपादित अंश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी थी मंदाकिनी जी आपने
2: जी, और धन्यवाद ज्ञापित किया था आपने यानी जयंत साहब ने।
1: और इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत, मन्नाडी की आवाज में शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

वो था फिल्म आंखियों के झरोखों से। हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं। गीत संगीत रविंद्र जैन का।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, हम जानते हैं आपको इंतजार होता है इस कार्यक्रम का, ताकि आप भी हमसे जुड़ सकें, शामिल हो सकें इस कार्यक्रम में और अपनी टिप्पणियों के जरिए अपने दिल की बातें साझा कर सकें। तो आइए आज की इबारत की ओर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम एक इबारत पढ़ते हैं और उस इबारत को लेकर उस इबारत में से आपको कुछ शब्द चुनने होते हैं। तो चलिए, जो साथी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं वो तो ठीक ही है, वहां पर कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन यदि कोई साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए एक बार हम ये आज की इबारत पढ़ देते हैं और आपको इस इबारत में से शब्दों को चुनना है और बताना है कि आज कौन से गीत और किन शब्दों के गीत हो सकते हैं। आज की इबारत है, जीवन की ज्योति तब तक उजली रहती है जब तक संवेदनाओं की पुकार सुनाई दे। चंदन की तरह शीतल रहकर किसी के साथ की कीमत को समझना ही सागर जैसी गहरी सोच की निशानी है। झूठ क्षण भर का सहारा दे सकता है, लेकिन मन को सच्ची शांति नहीं देता। दिल हमेशा ही गैरों में अपनापन ढूंढता है। कुछ तस्वीरें सिर्फ यादों में जीवित रह जाती हैं, और फिर रूह की वो जलन, काया की हर तपन इंसान को पहले से और अधिक मजबूत बना जाती है। तो इस इबारत को आपने सुन ही लिया है, आपको बताना है कि आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। चलिए पहले गीत की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको एक हमारे साथी ने लिखी हुई बात बताते हैं। एक साथी ने लिखा है, पूरी इबारत को एक भाव में देखा जाए तो इसका संदेश है कि जीवन में सच्चाई, संवेदनशीलता, रिश्तों की अहमियत और संघर्षों से मिली मजबूती ही इंसान को परिपक्व बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि यही चीजें हैं जो इंसान को और निखरने में और परिपक्व बनने में और मजबूत

करने में सहायक होती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज, नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, सुधीर फड़के का संगीत।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूं तो सुरीला सफर इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफर जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस तरह साथ होते हैं हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियां पढ़कर, और लगता है कि हाँ हमारी बात सुनने वाला भी उतनी ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को

गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है। जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म खामोशी से। हेमंत कुमार के ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

हाँ तो भाई, किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं।

बल्कि आत्मीयता विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हो, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं, कितने भी मन को कड़ा करें। बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हां, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है, और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर हैं, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर की।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों की गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है, यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं, यही सच्चाई है। ये भी एक साथी ने लिखा है और जरूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है, जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहां एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारे आम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो। इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूं, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है, तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था, उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना, उसका शब्द था मन। और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

फुर्सत के। किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं येसुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां हम दिल खोलकर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो, कुछ हो, तो हम यहां पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हां, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे ही, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी की भी थी,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: लौकी का भी होता है,
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का, तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
1: चलिए

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
2: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
4: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
2: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
3: हाँ तरक्की क्यों नहीं।

0: हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
2: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी? असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहनें की दूसरी कड़ी।
3: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी। शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूँ, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी और जो ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
1: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
4: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
1: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली,
3: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
4: बहन क्या रात भर भी न ठहरोगी?
3: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
4: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
3: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
4: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
3: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
1: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
3: कैसे हो गुरु सेवक? आज यहाँ न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
1: गुरु सेवक हंसकर बोला,
5: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
3: शिकायत तो सही है, वैसे मैं न जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
5: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रही है।
3: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
4: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
1: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। रामदुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
3: नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
1: आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
5: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
3: हाँ, रामदुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
5: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खोके पैसे मिले तो क्या।
3: सही कह रहा,
5: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूँ, और आंखें किसकी बचाऊं। सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हाँ उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालने लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
3: अच्छा,
5: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 ही महीने में 250 कर दिया।
3: अच्छा,
5: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
3: अच्छा एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है।
5: वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
3: अच्छा,
1: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया, और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए।
3: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
1: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन। लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
3: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे। मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते, या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे।
1: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
3: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी। हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा। और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं।
1: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
6: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है,
3: तो ला कर क्यों नहीं दिया।
0: मैं उसे निकाल देती तो कहते

0: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्यौत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
1: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूँ, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
1: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहां मिलते हैं? वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिकुद दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
4: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग 2। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है, क्या कहेंगी दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना?
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ न सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से,
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं, फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था।

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के

0: इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है। वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
0: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
1: जैसे कि
0: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था
1: जी,
0: और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू। और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
1: हाँ,
0: तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है, और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए,
1: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
0: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो
1: पोंछ
0: देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें खासतौर पर बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है, इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल्स से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे,
1: बिल्कुल,
0: कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में, और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो।
0: और फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है, कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगा

0: आते रहना चाहिए और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखाकर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती
1: है। बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डिह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी जब फर्नीचर की बात कर रही हैं जो कुर्सियां होती हैं टेबल होती है डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाली
1: आज थी? हम चलेंगे पंजाब की तरफ जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं पहले रेसिपी बताएंगे क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है।
1: जी ये अलग की रेसिपी है लेकिन हमने अपनी श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं। आप कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा जो पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
0: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
1: जी।
0: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है। तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं हमें लगता है कि आएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश के व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बताएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहे।
0: तो सुनिए हर रोज रात 9:30 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।